0: The Voice of Guyana, serving Guyana with informative and entertaining programming. The time is now 19 hours.
1: आकाशवाणी सुनने वालों भाइयों और बहनों और प्यारी दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ. आई एम योर फ्रेंड जाइडियो वेलकमिंग यू टू दिस वीक्स एडिशन ऑफ जेम्स ऑफ इंडिया विच कम्स टू योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेस्ट विशेस ऑफ एमसीएन रेडियो. It has always been a pleasure to bring you some of the greatest hits of yesteryear, and so we invite you to stay tuned to the Voice of Guyana as we begin this melodious joyride, one in which we shall recapture the nostalgic memories of yesteryear. Colvin Christian is on the console, and we start the program today with Lata Mangeshkar from the film Khandaan, Tum Hi Mere Mandir.